0: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କଥିତ ଏକ ନାଁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ହଁ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया।

0: हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटेल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, covering 326 route kilometers developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential and

प्रचार कलो अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भगवत प्रयोजना करिथिले सुहास महांती, संगीत परिचालना करिथिले राखाल चंद्र महांती, कंठशिल्पी मानिथिले बेकारी बड़ तृप्ति दास, शलभमा महापात्र एवं रामहरि दास।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଗୀତ। ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ କୁମାର ସାନୁ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବୁଲୁ ମିଶ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଓ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।

0: करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़

0: रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग एक घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हथियारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जाँच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हुरमुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढाई इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
3: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister

प्रचार कलु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेहीश विलासर संगीतात्मक परेषण प्रयोजन करसंजित महांत।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हिंदी कथा चित्रर गीत शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र एथर शुणु दिल कथा चित्रर समीर गीत रचना एवं आनंद मिलिंद संगीत निर्देशन गई अनुराधा पड़वाल और उदित नारायण।

0: जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। अब मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: ओडिया कथाचित्रर गीत शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्र कार्यक्रम परवर्ती गीतटी शुणु चिह्न अचिह्न कथाचित्रर गई तानसेन सिंह और स्वागतिका रथ गीत रचना करारायण प्रसाद सिंह संगीत निर्देशना वासुदेव राथ।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉ. यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं।

0: ढाई लाख साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
1: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur, to the national rail.

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो, चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गणी पकाऊ चाहे?
2: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इतने कहीं कि आम रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम।

0: कहानी एक गृहिणी आर अंतरात्मार बिजुली बिल सौदा स्कूल फीस सब होगा
1: बनीगला बजे
0: हाँ पांच हजार बचीगला
1: तो नुआ साड़ी नहीं जीबा
0: ना गला मास रे ही तो नहीं थी आउ गोटे ना प्रथमे बजेट बनाओ तापरे छोटो छोटो संचय को बैंक रे सेफ करो आउ टंका को बढ़िबार देखो देखे ही होछ एबे जाओ भाई
2: आरबीआई कहे
0: आर्थिक बुद्धिमता जहारी से समृद्ध नारी।

राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य चधारिणी भारत संस्कृति नारी माता सदा नारायणी नारी हेउची राष्ट्रर एक सुदृढ़ शक्ति समाजर आधारशिला तथा स्नेह ममता लालन पालन क्षेत्र में नारायणी स्वरूपा जेकोसी देश बा समाज विकास उन्नति प्रगति सबुकि नारी उपर निर्भर करे। जो देशर नारी जी शिक्षिता से ही देश से शिक्षित उन्नत एवं आत्मनिर्भरशील एथिपाई समाज रे नारी शिक्षार गुरुत्व रही नारी शिक्षिता एवं सचेतन होगा बांछनीय। शिक्षिता नारीटीए निजर जीवन को सुंदर कर गढ़ी तोलिबारे सामर्थ्य रखा सहित अन्यर जीवन को मध्य सुंदर कर गढ़ी तोली पारे। एक पूर्णांग समाज एवं पूर्णांग व्यक्तित्वर निर्माण नारी माध्यम रे होइथाए। भारतीय चिंतन रे महिला गृहलक्ष्मी धर्मपत्नी परिवार को उत्तर पीढ़ी देउथिबा तथा लालन पालन पोषण सहित संस्कार देउथिबा व्यक्ति नारी समाज राष्ट्र तथा सृष्टिर अंग होइथिबारु समाज राष्ट्रर पुनरुत्थान एवं सृष्टि संरक्षणर अपेक्षित सहभागी व्यक्तिगत पारिवारिक एवं राष्ट्र जीवन को सुचारू रूपे चलेबार व्यवस्था रे सौहार्द्य आवश्यक। भारतीय परंपरा एवं संस्कृति जीवन दर्शनर गभीर तत्वर बाहक एवं यह परंपरा संस्कृति नारी माध्यम रे ही पोषक भाव रे प्राचीन समयरु आधुनिक समय पर्यंत प्रवाहित हो आसुचि। शाश्वत सत्य उपरे भारतीय चिंतन आधारित एवं एहि सत्य को नारीटीए गभीर भाव रे हृदयंगम करिथाए बाल्यावस्थारु। नारीर त्याग सेवा क्षमा सौहार्द्य जीवन मूल्यर गोटी गोटी अंग एवं स्वाभाविक भाव रे एहि सबु गुण जने भारतीय नारी भितरे सहजात भाव रे थाए एवं एहा ही हेउची भारतीय परिवार व्यवस्थार एक अतुलनीय दान। भारतीय समाज नारी शिक्षार परिपंथी केबे नथिला। प्राचीन भारतर नारी शिक्षिता एवं विदुषी थिले स्वतंत्र विचारधारा युक्त थिले समाज रे नारीर सम्मान एवं स्थान सर्वोच्च थिला। पुरुष प्रधान बा नारी प्रधान समाज न होई एक धर्म प्रधान समाज व्यवस्था प्रचलित थिला। मध्ययुगरे तत्कालीन स्थिति देखि नारी प्रति दृष्टिकोणर परिवर्तन घटिथिला एवं नारीर स्वतंत्रता सहभागिता शिक्षा क्षेत्र रे कटकणा करा जायथिला। प्रथा परंपरा एवं रूढ़िवादर श्रृंखल रे नारी बांधि ही रहिथिला। भारतर स्वाधीनता संग्राम काल रे ऊनविंश ओ विंश शताब्दीर नारी माने एही श्रृंखल को छिन्न करी सामाजिक कटकणा प्रथा तथा दूषित परंपरा रूढ़िवाद को अतिक्रम करी स्वाधीनता संग्राम को क्रियाशील करने सहित भारतर सामाजिक आध्यात्मिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में अतुलनीय क्रांति आनी कालजयी उदाहरण स्थापन करी जायछंती। नारी जेतेबेले शिक्षिता हुए सेतेबेले सचेतन और संगठित हुए एवं समाज रे परिवर्तन आने। शिक्षा सहित परंपरार मूल्यबोध को धरी नारीटीए जेतेबेले आगकु बढ़े सेतेबेले निजर परिवार एवं संतान मानंकु संस्कृति सभ्यता सह ओतप्रोत भावरे जड़ित करि रखिबार सामर्थ्य रखे। वर्तमान आधुनिक जुगरे नारी शिक्षार प्रसार घटिछि। प्रत्येक क्षेत्र रे नारी सक्रियतार सहित निजकु जड़ित करि रखिछि। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर रे नारी शिक्षा ग्रहण करि पारुछि एवं विभिन्न वैषयिक शिक्षानुष्ठान रु शिक्षा प्राप्त करी दक्षता हासिल करि पारुछि। नारी शिक्षा नारी सशक्तिकरण नारी उत्थान रो अनेक अनेक आह्वान अनेक सरकारी योजना को नारी अत्यंत सचेतन हो स्वीकार करुची

आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू मुख्य संवाद भदोदरा ठारे 35,000 कोटी रु अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री साक्षरतार गुरुत्व विषय रे सचेतनता सृष्टि उद्देश्य रे आज पालन करा जाउछि आंतर्जातिक साक्षरता दिवस भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिकांक जयंती अवसर रे श्रद्धांजलि अर्पण कले उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्रमंत्री एवं ओडिशा समेत 6 राज्य में आज प्रबल वर्षा हे नहीं पाणिपाग विभाग सतर्कता जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात गस्तर जा भदोदरा ठारे 35,000 कोटी रु अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कर प्रधानमंत्री पश्चिमांचल समर्पित माल परिवहन करिडर तीनटी प्रमुख भाग को आज देश उद्देश्य उत्सर्ग कर संपृक्त माल परिवहन करिडर गुड़िकर निर्माण कार्य शेष होगा पर आज कार्यक्षम हो अवसर में प्रधानमंत्री नुआ सानंद नुआ मकरपुरा नुआ उम्बरगांव एवं नुआ जेएनपीटी माल परिवहन रेल सेवार शुभारंभ कर तंडारोड एवं भदोदरा मध्यरे एक यात्रीवाही ट्रेन रो प्रधानमंत्री शुभारंभ

0: ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ में इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: अपडेट रहे आगे रहे एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों

0: के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद ने विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ, ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ, ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वाली महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़

0: रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की पांचवी राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। इससे श्री गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायलों से आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडे ने पैरा रिकर पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स के फाइनल में इराक की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. PM Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon, and new JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a global manufacturing hub, now producing its own advanced train and metro coaches. Prime Minister Modi highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector, calling the completion of over 2,800 kilometers of dedicated freight corridors a historic achievement for 21st century India and a testament to the nation's changing work culture.
2: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: During the program, Mr. Modi also laid the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. In Mumbai, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Global FinTech Fest, GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences. The 4-day fest will conclude on the 11th of September. The Bombay High Court today refused to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in a 2000

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियाँ, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी।

0: कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताज़ी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जी,
5: हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1 2 3 सब छुप गए ना। 98 99 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है।

0: दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
1: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
2: मोहित पापा! अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
1: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
0: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
1: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
0: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
2: धप्पा!
0: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
1: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
0: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
3: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
0: मारिया
2: धप्पा!
3: अरे नहीं।
1: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
4: दादी दादी
3: दादी, हिलना मत, जीत आया है, वो मुझे धप्पा बोल देगा।
0: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
2: सिमरन धप्पा,
3: फिर पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
1: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।
0: चादर के पीछे, यहाँ तो नहीं है। पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा!
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
5: छुपन छुपाई, है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
7: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर

0: सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
1: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
2: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
3: जी, जी।
1: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
3: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
4: जी,
3: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
4: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
3: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
4: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
5: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
3: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
5: अच्छा।
3: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
1: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
5: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
1: अच्छा।
5: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
3: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
5: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
3: जी,
5: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
3: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास,

0: इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियां बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
1: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
2: जी।
1: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
0: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार।
3: नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
4: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
1: अच्छा, एक बात बताओ
4: जी,
1: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
4: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
1: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
5: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
1: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है
4: जी।
1: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
4: अच्छा।
1: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
4: ऐसा विकार होता क्यों है?
1: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
4: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
1: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
5: जी मैडम।
1: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
4: जी।
1: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
4: जी।
1: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
4: जी ठीक है।
3: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
4: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
6: नमस्ते।
3: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
6: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
0: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और

0: बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
1: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है, कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
2: अच्छा,
1: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
0: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
1: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
3: जी,
1: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
2: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
0: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
4: हाँ, संभव तो आता है पर लिख नहीं सकती।
1: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
2: अच्छा,
1: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
0: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
1: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
2: अच्छा,
1: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
0: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
2: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
0: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
2: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
5: जी, आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
0: जी,
5: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
0: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
2: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
5: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
2: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
5: नमस्कार।
6: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
7: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
8: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
7: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
9: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।

0: इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: प्रचार कलु NCERT तथा CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଯୁବ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC के बैठकों में, उस चर्चाओं पे आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
3: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर पिछले

0: 1, 2, 3, 4।
1: सुन चा नियो। अरे चा नियो मो।
2: देलो।
1: कौन एमिति गणी पकौच जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काई की आम रेडियोटा अन कलानी। मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानीपाटणा ट्यून कर। प्रत्येक दिन सकाळ 10:10 रु 11:10 जाए स्थानीय खबर आउ मनपसंदर गीत कुनी कार्यक्रम।

0: संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
1: कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री मोदी 97,00,000,000,000 रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां त्रयाणां रेल विस्तार योजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। मुंबय्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27,00,000,000 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य अद्य उद्घाटनं विधास्यति। अस्य वार्षिक सम्मेलनस्य सप्तमं संस्करणम् अद्य समारब्धं सत् आगामिनि सितंबर मासस्य 11 दिनांके समाप्तिमेष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सामाजिक सेवां स्वच्छतां च प्रभावी दैनन्दिन आचरण रूपेण स्वीकर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरम् आयोजिता विशाल जनसभा सम्बोधिता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः परिवर्तनकारी प्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्ग विक्रेत्रेभ्यः पथ विक्रेतृभ्यश्च सुलभ ऋणस्य अथ आधुनिक अंकीय देय सौविध्यानां च सुलभ प्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीय समावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्वं प्रतिपादयन् प्रधानमंत्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीय प्रशासनेन निवासीभिश्च संचालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्म स्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तर समर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वमद्य प्रधानमंत्री मोदी वडोदरायां 35,00,000,000 रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्व सदस्याय विश्रुत संगीतज्ञाय भारत रत्न विभूषिताय डॉ भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन्, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, गृहमंत्री अमित शाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समार्पयन्। सांप्रदायिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉ हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असम प्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तर भारतस्य च सांस्कृतिक चैतन्यं समग्र राष्ट्रे प्रासारयत्। अपरस्मिन् संदेशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन इत्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना संगीतेन ओजस्वीभिः शब्दैश्च डॉ हजारिका असमस्य, पूर्वोत्तर भारतस्य अथ च विशाल मानव संवेदनानां जीवन्तरूपं संगीतबद्धम् अकरोत्। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। न्यायमूर्तिनः एन आर बोरकर इत्यस्य एकलपीठेन राहुल गांधिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत्। तथापि उच्चन्यायालयेन 21-2000 वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सः निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं 6 सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। तस्य यात्रा भारत श्रीलंकयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षा सहकारस्य सामुद्रिक सहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति। श्रीलंकायाः बण्डारनायके अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके श्री सिंहस्य श्रीलंकायाः उपरक्षा मंत्री अरुणा जयशेखरः श्रीलंकायां भारतस्य उच्चायुक्तः संतोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ। अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः तृतीय चरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीय धनुर्धरैः त्रीणि पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଲୋକଗୀତ କ୍ରମରେ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନ। ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଘନଶ୍ୟାମ କୁମ୍ଭାର ଓ ସାଥୀ। ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
3: ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: ए पर्यंत यही योजना रे 9,50,00,000 रु अधिक लाभार्थी जोड़ी ही सारे। जदि आपण 18-40 वर्ष बयसर होइथांती तबे मासिक अटल पेंशन सहित तीनोटी ग्यारंटेड सुविधा विषय रे जानिबा पई आपणक बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।
5: बोल कृष्ण गुरु धर्म बना उदय हौ, बोल आनंद सागरे हरि हरि वो। श्री कृष्ण करुणाकरम जनहितम राधापति सुंदरम श्यामला वर्जितम प्रसन्न वदनम वंशीधरा मोहन भाले चंदन बिंदु इंदु सदृश्यम कन्नेल सत्कुंडलम दिव्यांग वर शोभितम नटवरम

0: आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तर्पण कुमार प्रधान जुहार पहला मुखिया खबर पांच दिनिया संयुक्त आरब एमिरेट्स यूएई गस्त गले मुख्यमंत्री राज्य के पूंजीनिवेश आनवार लगी निवेशक आ शिल्पपति मान संगे करबे आलोचना भुवनेश्वर मूल हो राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी उत्कला श्री गणेश राज्य केन्द्रांचल अधीनते थिबार जिला मानकर आईन श्रृंखला परिस्थितिर समीक्षा कले पुलिस महानिर्देशक आउर समाज लोक के साक्षर करबार उपरे जोर देकरी आज पालन करा जाउछे अंतर्जातीय साक्षरता दिवस एथरा पूरा खबर ओडिशा के अटका पूंजीनिवेश आनबार आर विश्व स्तर थी राज्य निवेश संभावना के प्रदर्शन लागि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पांच दिनिया संयुक्त आरब एमिरेट्स यूएई गस्ती जाइछन गस्त अवसर मुख्यमंत्री ओडिशा नो विदेशी पूंजीनिवेश सुजोग आर संभावना उपरे पृथ्वी निवेशक आ शिल्पपति मानक सूचना देवे ओडिशा सहित भिन्न भिन्न देशर व्यावसायिक आ शिल्प संपर्क के बरकस करबार उपरे जोर दिया जिबा गस्तर पहला दिने आज मुख्यमंत्री आबुधाबी नो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपानी आउ इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप रो प्रमुख नेतृत्व मानकर संगे आलोचना करबे राज्य शिल्प सूचना और लोकसंपर्क आर गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा सेन पहुँचवा ऋतु निवेशक सम्मेलन प्रस्तुति समीक्षा कर भारतीय दूतावास अधिकारी और राज्य सरकार प्रतिनिधि दल संगे आलोचना कर श्री शर्मा कार्यक्रम तैयारी और समन्वय बाबदे
1: आईबीपीजी जो इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स ग्रुप एवं इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स काउंसिल सहित अलग अलग मीटिंग अच्छी तत्सहित आम पेट्रोकेमिकल्स गोटे राउंड टेबल पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक्स गोटे राउंड टेबल एवं सोवरेन फंड हाउसेस सहित गोटे राउंड टेबल रखा जाए अच्छी माननीय मुख्यमंत्री आसला परे आज इंडियन एम्बेसी इंडिया हाउस रे सहित इंडियन एम्बेसडर एवं इंडियन एम्बेसी विभिन्न अधिकारी मानक सहित मीटिंग हबो एवं अबुधाबी रे थिबा किसी गण्यमान्य व्यक्ति मध्य से मीटिंग रे योगदान देबे
0: मुख्यमंत्री आज दुबई नो गुटे जिला गुटे उत्पाद कार्यक्रम अधीनती ओडिसार भिन्न भिन्न उत्पाद रो प्रदर्शनी के उद्घाटन करबे इतार छड़ा ओडिसा निवेशक सम्मेलन थी जोग देकरी राज्य निवेश लागिथिबार सुजोग बाबदे निवेशक मानकु जनाबे ए अवसर मुख्यमंत्री यूएई नो रहुतबार प्रवासी ओडिया मानकर संगे आलोचना करबे बोली जनापड़ी छे भुवनेश्वर एकाम्र हाटठाने राज्य सरकार हस्तंत बयनशिल्प और हस्तशिल्प विभाग तरफ पहला थर लगे राज्यस्तरीय स्वतंत्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी उत्कला श्री गणेश आज शुभारंभ हो

जिला समन्वय आउ तदारख कमिटि दिशा बैठक अनुष्ठित हो जाए। सम्बलपुर सांसद धर्मेन्द्र प्रधान बैठक की अध्यक्षता करी नाक्टीदेउल रेड़ाखोल जमनकिरा कुचिंडा आउ बामरा ब्लक नु पीएम कुसुम योजना के व्यापक करवार लगी निर्देश देते। सबु ग्राम पंचायत आउ हाईस्कल के इंटरनेट संजोग करार लगी निर्देश दि जाए। जिलानु 202 टेलीफोन टावर थिबार बेले आउ 300 दरकार अछि। से भितरु 60 मंजूर करा जाइछे बोली बैठक नु जना पड़िछे। बैठक थी ग्रामीण विकास पंचायतीराज आउ पानीय जल मंत्री रविनारायण नायक, सम्बलपुर विधायक जयनारायण मिश्र, रेंगाली विधायक सुदर्शन हरिपाल प्रमुख उपस्थित थिले। बौद्ध टाउनहल ठाने भीम भई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर हो जाए। मोट 85 जन भिन्नक्षम पंजीकरण करथिबार बेले 48 जन को भिन्नक्षम सर्टिफिकेट, 23 जन को बस पास, डीआरआई ऋण लगी 2 जन, भिन्नक्षम उपकरण लगी 9 जन आउ सरकार भिन्न भिन्न जनहितकर योजना लगी हिताधिकारी बछा जाइथिला। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफ 71 नुआ भावे उन्नीत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक मानक लगी भुवनेश्वर बीजेपी उच्च माध्यमिक विद्यालय दिनकिया दिग्दर्शन कार्यक्रम हो जाए। ऑनलाइन नालेखा प्रक्रिया, अतिथि अध्यापक बाछवार आउ अलगा शैक्षिक आउ प्रशासनिक कामकाज सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिचालनाल गुरुत्वपूर्ण दिग बाबदे जनाबार लगी इ कार्यक्रम आयोजन करा जाइथिला। पश्चिम केन्द्रीय पाखर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर नु आयबा शुक्रवार तक आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र हेबार संभावना रही। इतार प्रभाव थी उत्तर आंध्रप्रदेश आर दक्षिण ओडिशा नु जबर वर्षा हेबार संभावना रही। राज्यर भिन्न भिन्न जगानु आयबा 2 दिन तक बिजली घड़घड़ी सांगे वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र तरफ अनुमान करा जाइछि। आयबा 24 घंटा भितर बिजली मारिकर वर्षा होगा बोली 15 जिला के सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। शेष मुख्य खबर फेर गाय 5 दिनिया संयुक्त आरब एमिरेट्स यूएई गस्ती गले मुख्यमंत्री। राज्य के पुंजनिवेश आनबार लगी निवेशक आउ शिल्पपति मानकर सांगे करबे आलोचना। भुवनेश्वर नु मूल हेचे राज्यस्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी उत्कला श्री गणेश। राज्यर केन्द्रांचल अधीन थिबार जिला मानकर आईन श्रृंखला परिस्थितिर समीक्षा कले पुलिस महानिर्देशक। आउर समाजर फिल लोके साक्षर करवार उपरे जोर देकरी आज पालन करा जाउछे अंतर्जातीय साक्षरता दिवस। आजर आंचलिक खबर इनु शेष होला। जुहार।

0: बारीपदा पौरपालिक पक्षर आयोजित तीन दिनिया स्वायत्त शासन दिवस समारोह उद्यापित हो जाएछि। नगरपाल कृष्णानंद महांती अध्यक्षतार अनुष्ठित उद्यापनी उत्सव में गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सांसद नवचरण माझी विधायक प्रकाश सोरेन प्रमुख जोग देथिले। एहि अवसर आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में 55 जन महिला समेत 716 जन रक्तदान करथिले। जिला हालचाल आज एति आसंता काल जिला हालचाल शुणे नवरंगपुर जिला संपर्क में।
1: आपण माने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचार करुछु भारत सरकारंकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: बेड़ आसी जी है कौन अपा कही आसवे आग बोली कुआडे गले जे अपा देखा ना कहीं
6: कुआडे जीवी कि रे दामा ए गोटे गोटे तो चली चली
5: आई अपा आईले अपा जुहारे जुहारे अपा
6: जुहारे जुहारे दामा आउ देह पा भलो अच्छी तो
5: हाँ अपा भलो अच्छी सुखे दुखे चली संसार
6: भईरे दामा संसार भितरे घर करिथिले पथर पड़िले सही सुख दुख भल मंद सब बेले लागिकी रहिबो
5: कोन करिबि अपा केतेबेले पाग जग तो ठीक रहूनी केतेबेले दिन रे वर्षा हेलाणी केतेबेले राति रे वर्षा हेलाणी केतेबेले कोन घरु बाहरि भी बुझी पारुनी घरे बसी बसी दिन कटि जाउची आ चासी बसी लोक आमे चास नकले दि मुटा खाइबु कोन कोन करिबु कहिलो अपा
6: होइरे दामा
5: हां अपा
6: आ तम भारी जात दि अक्षर पाठ पढिचंती स्वयं सहायक गोष्ठी करिचंती आ भल खटणिया पिलाटा सब बेले काम गाम रे मन सबुठारु बड कथा हेला तम स्त्री दि अक्षर पाठ पढिचंती अरे कथा रे परा अछि नारी हेले पाठोई देश जीव आगे घरर महिला माने मंग धरितांती अरे पानी रे पहरिबा ठारु आकाश रे उड़ीबा जाए सबु तेरे परा नारी माने ना कोलेनी
5: हां परापा से पा दि अक्षर पाठ पढ़ी अपा बोली मत से बैंक गले कि कौटी ऑफिस गले सी मत बहुत साहय करे अपा आउ मोठ टी अधिका पाठ पढ़ी बोली मत सब बुझे की कह दे
6: भल महिला माने जदि आगेबे ताहले आमर देश आगेबो नारीटे जदि दि अक्षर पाठ पढ़ीबो तार पिला को से पढ़ई पारिबो भल मंद बुझी पारिबो सुविधा असुविधा रे बुद्धि खटेई कि दि पैसा रोजगार करि पारिबो
5: हां परा
6: सेहिथि पई मा होची पिलार प्रथम शिक्षक हेले दामा तमर चासबास भलरे चालीची तो
5: कोन पाग जोगो तो देखुचो अपा केमेदी पचारु तो चासबास भलो चालीथिबो मु भाबुची आउ गोटे किछि उपाय खोजती रोजगार रो पंथा हेले आउडे परिवारटा हम टिके सुरुखुर रे चलंदा ओफ तापरे सुखरे शांतिरे आनंदरे बसी रोजगार आउ आमो घरणीकर आहार

0: सुखरे चालंता संसार
1: हेले दामा तमे गो पालन करुन
0: कोनो इत्ते रोजगार हबो पा
1: मोला जा अरे पशु पालन पर गोटे लाभजनक व्यवसाय
0: आतले बढ़िया हला कोनटी कोनो कोनो मुटी के आउटी अधिक रोजगार चाहू जी तो
1: कहिबी कहिबी एई बाबद रे कथा हबा हेले संजो बुड़ो गोटे गीत सुनिबा तापरे कथा हबा
0: तापरे आगु कथा हबा

0: दामा
1: हाँ
0: कथा तो हेले आउ बजार रो भाव जानिबानी
1: आउ न जानिले सेटा केमिति होबो
0: हो।
2: कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीनस्थ विपणन ओ निरीक्षण निर्देशालय सूचना अनुसारे ओडिशा राज्य पई सर्वोच्च पनीपरिबा दर हेउछि आलु किलो प्रति 29 टंका प्याज किलो प्रति 46 टंका टमाटो किलो प्रति 23 टंका लंका किलो प्रति 62 टंका रसुण किलो प्रति 190 टंका अदा किलो प्रति 100 टंका गाजर किलो प्रति 31 टंका एवं भेंडी किलो प्रति 37 टंका मने रखंतु प्रकाश करा जायथिबा पनीपरिबार दर विभिन्न जिल्ला तथा हाट बजार रे खाउटी मानंकर आवश्यकता ओ पनीपरिबार उपलब्धता अनुसारे कम बेसी हेबार संभावना रहिछि
0: दामारे
1: हाँ बा
0: कथाबार्ता हेले आलोचना सुनिले हित सुनिले बजार भाव तो जानिले आ पानी पागटा सुनिबा
1: पानी पाग सुनिबा ना आउ
2: भारतीय पाणिपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु मिलिथिबा सूचना मुताबक आगामी 24 घंटा मध्यरे ओडिसारा समस्त जिल्लार गुटिए किंबा दुईटी स्थानरे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात सहित झड़ हेबार संभावना रहिछि पवनर बेग घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर पर्यंत रहिपारे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर मयूरभंज गजपति गंजाम पुरी खोर्धा एवं नयागढ़ जिल्ला पाई सतर्कता जारी करा जायछि
0: दामा समय इशारा देलानी ताले आजिर कार्यक्रम आम श्रोता भाई भोनी मानंकु केमिति लागिला चिट्ठी लेखि निश्चय जणैबे रहुछु
1: नमस्कार
3: एही कार्यक्रमर प्रायोजक थिले कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रणालय भारत सरकार
4: हा, हा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार

0: दर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। दलित ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, साउथ जोन से 466 रन आगे। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ब्लॉक्स और एलिना रिबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने जापान और पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया। और पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ किया अपने अभियान का समापन। कार्यक्रम की शुरुआत करते तीरंदाजी से, जहां खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक अपने नाम किए। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारतीय तीरंदाजों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों की कंपाउंड और रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि स्वाति चौधरी ने एक ही दिन में 2 पदक हासिल किए। मौजूदा विश्व चैंपियन तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की पुरुष कंपाउंड जोड़ी ने इराक के अब्बास कादिम और अनवर अल्दावोद को 152-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने स्लोवाकिया के डेविड इवान और डेनिस इवान को 6-2 से पराजित कर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन के हाथों 0-6 से हार मिली। स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम W1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 वर्ग में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने रूस की एलेना क्रुतोवा को 6-2 से हराया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि W1 रिकर्व कंपाउंड वर्ग गंभीर शारीरिक अक्षमता वाले पैरा तीरंदाजों के लिए विशेष श्रेणी है। इस वर्ग में खिलाड़ी व्हीलचेयर से निशाना लगाते हैं और एक ही स्पर्धा में रिकर्व या कंपाउंड धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उधर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत कांस्य पदक से चूक गया। शीतल देवी और पायल नाग तीसरे स्थान के प्लेऑफ में चीन की वांग हुईटिंग और गाओ फांगशिया की जोड़ी से हार गई। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दलित ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन ने 6 विकेट पर 242 रन बना लिए हैं। तिलक वर्मा 56 और चामा मिलिंद 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया। अभिमन्यु ईश्वरन ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। वैभव ने 44 रन बनाए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने शिखर मोहन के साथ 4th विकेट के लिए 94 रन जोड़े और कुमार कुशाग्र के साथ 230 रन की साझेदारी की। इसके अलावा ईशान ने रॉय के साथ 6th विकेट के लिए 140 रन जुटाए। ईशान ने 7 छक्कों और 30 चौकों के साथ 270 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। विपक्षी खेमे से त्रिपुरन विजय ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि चामा मिलिंद और श्रेयस गोपाल को 2-2 विकेट हाथ लगे। साउथ जोन ने तीसरे दिन की समाप्ति तक पहली पारी में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। देवदत्त पड्डिकल ने नारायण जगदीशन के साथ 2 विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 70 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जगदीशन ने 6 चौकों के साथ 32 रन बनाए। पड्डिकल ने 4 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली। टीम ने 129 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए स्मरण रविचंद्रन के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रन और श्रेयस गोपाल के साथ 6वें विकेट के लिए 66 रन जुटाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। ईस्ट जोन की ओर से मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। कौनेर कुरैशी और शिखर मोहन ने 1-1 विकेट लिए। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये मुकाबला ईस्ट जोन के लिए ऐतिहासिक है। ईशान किशन ने 250 से ज्यादा का रन बनाया और मोहम्मद शमी ने भी अपना 100वां मुकाबला खेल रहे। उधर आईसीसी ने आज T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में श्रीचरणी

0: पहले, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन दूसरे, इंग्लैंड की चार्ली डीन तीसरे, दक्षिण अफ्रीका की एन मलबा चौथे और इंग्लैंड की लारेन बेल पांचवें स्थान पर है। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को दो स्थान का फायदा हुआ है, दीप्ति अब छठे स्थान पर पहुंच गई है। उधर बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, जॉर्जिया वॉल दूसरे, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे, वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यू चौथे और भारत की स्मृति मांधना पांचवें स्थान पर, जबकि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर दसवें स्थान पर हैं। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने लुसियानो डार्डरी को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उधर अलेक्जेंडर ब्लॉक्स ने फ्रांसिस्को सेरियनडोलो को 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अलेक्जेंडर का सामना कल खचानोव से होगा। मुकाबले से पहले अलेक्जेंडर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: I just do my thing. I work hard. Even though I have tough losses sometimes, I know that good times are always coming. And now it's one of those good times. So I'm going to try to enjoy it as much as I can.
0: उधर क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन का सामना चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। अल्काराज ने इस मुकाबले को रोमांचक बताया।
2: Shelton, really powerful player. I think he used the crowd, the people, you know, behind him, you know, especially when, you know, he's playing here at home. So I'm excited about playing, you know, the quarterfinal. I gotta be ready. I'm gonna watch it and I'll be ready for that.
0: उधर बेन शेल्टन ने कहा कि कार्लोस एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं।
3: To be not playing for 5 months, to come out and do what he's done so far this tournament has been superhuman. We're happy to have him back on tour. You know, he lights up the stadium every time he plays. I think it's going to be fireworks on Tuesday night.
0: तर महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना ने नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में एलिना का मुकाबला क्यूनमिन झेंग से होगा। मुकाबले से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: Well, of course, I wanted, I don't know anyone who wouldn't wish this, but yeah, definitely that's one of my goals, and I try to approach the same way, try to do everything I can, fight till the end my next match, and let's see what's going to happen. But yeah, if I serve well as I did today, I think I have all the chances, so yeah, again, I try my best, and hopefully it's going to go my way.
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज क्वार्टर फाइनल में एरिना सबलेंका और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वहीं महिला टीम ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
5: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। भारत ने 5वें मिनट में अनमोल के पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली। दक्षिण कोरिया के डोहोन चोई ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में लवनूर सिंह ने 18वें मिनट में फील्ड गोल करके भारत को आगे कर दिया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने होगुक यू की मदद से पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 3-2 कर दी। दक्षिण कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे कोरियाई टीम तीसरी बार 3-3 से बराबर पर हो गई। जब मैच आखिरी क्वार्टर में बराबरी की ओर बढ़ रहा था, तो प्रभदीप सिंह ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में बैक थ्रू पाया और 42वें मिनट में इंडिया की लीड 4-3 कर दी। चौथे क्वार्टर में गुरसेवक सिंह ने भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर फिर से गोल करके स्कोर 6-3 कर दिया। आर्यन जेस ने 98वें मिनट में निर्णायक गोल को 7-3 से भारत की जीत पर मुहर लगाई। वहीं महिला टीम ने अपने तीसरे एलीट पूल मैच में जापान को 7-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने 5वें मिनट में कृष्णा शर्मा के गोल से 1-0 की बढ़त बनाई। 9वें मिनट में जापान के फाउल करने पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिससे उनकी बढ़त दोगुनी हो गई। पूर्णिमा यादव ने 14वें मिनट में फील्ड गोल दागा और भारत ने पहले क्वार्टर का समापन 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ किया। भारत हाफ टाइम तक 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ आगे रहा। इसके बाद भारत ने फिर से अपनी गति बढ़ाई और 5 मिनट में 3 गोल दागे। गीता यादव ने 41वें मिनट में फील्ड गोल करके स्कोर 4-0 किया और फिर 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल पूरा किया, जिससे भारत की मजबूत

0: अतिरिक्त स्थिति और भी मजबूत हो गई। पूर्णिमा यादव ने 46वें मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और तीसरे क्वार्टर के आखिर तक भारत की बढ़त को 6-0 तक पहुंचा दिया। भारत ने आखिरी क्वार्टर के 50वें मिनट में सानिका चंद्रकांत के गोल की मदद से मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के आईजी नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए रवाना हो गई है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को पूल बी में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। टीम अपना कैंपेन 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ शुरू करेगी। इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब बात पिकल बॉल वर्ल्ड कप पर। पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। वियतनाम के दानांग में भारत ने 7 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य समेत 41 पदक जीते। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: 48 भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किड्स, जूनियर्स, ओपन, सीनियर्स और मास्टर्स टीम इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा 130 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कैटेगरी में भी मुकाबला किया। वीर शाह के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने किड्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसमें विरांश चोपड़ा, आरिन बल्लानी, महिका राठौर, मानसी कार्तिक, आश्रिता एस, कबीर मेहता और प्रार्थना मोटियानी शामिल थे। भारतीय कप्तान को किड्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर भी सम्मानित किया गया। भारतीय जूनियर टीम क्वार्टर फाइनल में वियतनाम टीम से हारकर चौथे स्थान पर रही। भारतीय ओपन टीम क्वार्टर फाइनल में यूएसए से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इंडियन मास्टर्स टीम भी क्वार्टर फाइनल में वियतनाम से हार गई। वहीं सीनियर टीम न्यूजीलैंड से हारकर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। इस बीच हर्ष मेहता ने व्यक्तिगत इवेंट में ओपन प्रो मेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पूर्वांश पटेल ने अंडर 18 बॉयज सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। भूषण अकुत ने अशोक रोहिरा के साथ 60 प्लस मेंस डबल्स, 60 प्लस मेंस सिंगल्स और 60 प्लस मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। फेरोज जैदी ने 40 प्लस वुमेन सिंगल्स में जीत हासिल की, जबकि विवेक रेड्डी ने इसी कैटेगरी में मेंस इवेंट जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब जन्मदिन विशेष में आज क्रिकेटर और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का 27वां जन्मदिन है। शुभमन गिल ने 43 टेस्ट मैच में करीब 43 की औसत से 3043 रन बनाए। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट के 67 मुकाबलों में लगभग 60 की औसत से 9 शतकों की मदद से 3379 रन बनाए हैं। वहीं 2020 में 869 रन का उन्होंने योगदान दिया है, जिनमें एक शतक भी शामिल है। शुभमन गिल ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को शीर्ष पर रखा है और ये प्रमाण भी है कि इंग्लैंड में उन्होंने 5 शतक लगाए और 700 से अधिक रन भी बनाए।
3: ये तो ध्यान में होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट है, अगर आप जल्दी आउट हो गए तो सारा दिन आपको बाहर बैठने को मिलेगा और जितनी देर आप क्रीज में है उतनी देर आप रन बना सकते हैं, बाहर बैठ के तो रन हो नहीं सकते। इसलिए ख्याल तो रखना पड़ता है कि लिफ्ट नहीं मारनी, जितना हो सके अपनी तरफ से ग्राउंडेड खेलना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लूज बॉल फुल टॉस वगैरह मिलती है तो उन्हें मैं हवा में लिफ्ट मार देता हूँ। मेरा मकसद वही है कि वो इंडिया का अपने टैग लगा।
1: स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से शुभमन गिल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करें कि शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप में ऐसा ही प्रदर्शन कर भारत का नाम और आगे बढ़ाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व

0: रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people

0: people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
6: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की

0: समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
1: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरी अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक

0: भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू श्रेया जी।
0: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
1: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया।

0: भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है। आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
1: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इस पे कंटूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है। से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 इयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है।
0: जी, इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है, तो वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए, ये चारों इम्पोर्टेंट है, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर 1 है या नंबर 2 है ना। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बसोया जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है और इसमें काफी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और काफी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ड्रग जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की जरूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स है उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं। तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए जो अभी नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए है, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले 1 सालों में मैंने देखा है।
0: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
1: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है। नो, फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफी उसके ऊपर रोकथाम है, जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, बट दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
0: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं, आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए

0: विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है? मतलब
1: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं और ये प्रोसेस शुरू हुआ है और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था। और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
0: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
1: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था और देश बहुत बड़ा है। और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था, उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की जरूरत है। तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000 जो भी आप नंबर बता रही है 751, अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या यह है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है तो वो उसको छिपाते हैं। जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। और दूसरी, बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की जरूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहां पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफस्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेन करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा, उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो उसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीजों के लिए जो सरकारी जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है, वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई डिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है, और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हो।
0: जी, सरकार ने 1 लाख नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
1: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुंचे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया है, तो ये जो 1 लाख वॉलंटियर्स है, और ये 1 लाख वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। NSS है, NCC है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से

0: ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए
1: जी। अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करे। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्स अप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की जरूरत है। तो ये सबसे काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियां हैं उसको समझे और उनसे बात करे।
1: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नजरिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू श्रेया जी।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁରୋଧର ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ବଂଶୀବାଦନ। ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ, ରାଗ ମାଥ ମାଲାଶ୍ରୀ। ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମରେ ବଂଶୀ ବାଦନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ରାଗ ମାଧବନାଥ ସାରଙ୍ଗ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏଭଳି କରି ଶୁଣୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं

0: का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy